0: एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे चल लेते हैं।
1: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में बाल लगण वारे वाक्य जो जिम्मेवार केर? वफाकी हुकूमत बे ॾींहं बि 14 मासूम ॿारनि जी सड़ी फौत थियण वारे वाक्य जा जिम्मेवार ज़ाहिर न कया। साने जे जांच लाइ जोड़ियल कमेटी जांच शुरू करे छॾी। अमले खां लिखत में बयान तलब। CCTV फुटेज बि तहवील में वठी छॾिया। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ चयो आहे त ज़िंदगीअ जे का बि क़ीमत न आहे। साने जे जांच बाद ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। अॼु शुरूआती रिपोर्ट मिली वेंदी।

0: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
1: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमूल जारी साल से वन क्वेश्चन जो हिस्सो हो दौरे के अमेरिका सा गडण वाली खबरों बेबुनियाद आन पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है एक तरफन पाबंदियों के अमल करण जा पाबंद ना वे तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिरा बीच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के नुमाइंदे तौर पर ईरान जो दौरो करण वाली खबरों के रद्द करते है तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो छिकताण में घटताई वाले पाकिस्तानी कोशिशों जो हिस्सो हो पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गाल तैयार है अफगानिस्तान के पैं सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थे रोकणो पव कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से तेहरान पुची हो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल सानी जो तेहरान पुचण से परे वजीर अब्बास इराकी आदुर भाव किया मुलाकात दौरान बतरफन लगापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल कतरी वजीर आजम ईरानी सदर स्पीकर अस्करी क्यादत से मुलाकातू भी कौन अमेरिका ईरान विच में जारी चिकताण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गाल आबना हुर्मुज़ बहाली वो मामलो भी गौरे ख्वाहिश कुछ न थो नवन सूबन बाबत जैके शौक है ठहराव हाने सिंधी सिबली छबेरा सूबे के वरांग खिलाफ ठहराव पास किया है सिंध जहा मू चाहन खबर है सिंध जो आवाम जो चाहो वो ही थो मुझी या अवाज ख्वाहिश से कुछ न थो वे वजीर मुराद अली शाह के इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल मुराद अली शाह तो मकानी निज़ाम इदार के बाख्तियार बनने लाइ पीपल्स पार्टी मंशूर है सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमतू मौजूद हैं पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश हाल वाकई तय दिल दियारींदड़ है मुल्क में अस्पतालों जो हालतों बेहतर करने की जरूरत है बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी के आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम तौर नामजदगी नून लीग आज़ाद कश्मीर के इख्तिलाफन जो शिकार राजा फारूक हैदर व पार्टी के सीनियर अगवाणन इजलास आज़ाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम से खदशा जाए राजा फारूक हैदर नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के वोट न दियण ऐलान फारूक हैदर है तो जो कुछ थो सुे सभी के खबर पी वी कोडे की भरसा कार्गो लोडर वाह में किरण कर टिन बार समय चार बार मीरवाह केनाल में बुडी वाया बुडी वह दह साल बारडे लाहौती जो लाशत बारह साल मीर मोहम्मद यारह साल मुंतजिर तेरह साल जुनैद गोपांग हथ ना आया गोला जारी मीरवाह केनाल निकरोड़ता कार्गो लोडर कंट्रोल में निकरी वाह में किरी पो

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडू सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: members para attempts doro pae vakhe ja tafseel malum kya committee chairman dr mahesh kumar malani chwaye ta amle je banan mein tazad hai aliya kamran chwaye ta amle je banan ma lagi rahi hai ta khen tatto hanayo hoyo hai dr shazia sobia chwaye ta amle ja ban tazad hain lage to duty te maujood na hoya कंहिंजी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो नवनि सूबनि बाबति जंहिंखे शौक़ु आहे ठहराउ आणे सिंध सभिनी छपेरा सूबे जी विरागीअ ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि ख़बर आहे सिंध जो अवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो मुंहिंजे या अव्हां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो वॾे वज़ीर महादरी शाजी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल फादल शाह चयो त मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि पिम्स इस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतिहाई दिल दारींदड़ आहे मुल्क में इस्पतालनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे
1: Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Sayyid Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
0: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो मन लाइ जारी सालिसी वारनि कोशिशुनि जो हिसो हो दौरे खे अमरीका सां ॻंढण वारियूं ख़बरूं बेबुनियाद आहिनि पाकिस्तान ऐं ईरान जो वापार जारी आहे हिक तरफ़े पाबंदियुनि जे अमल करण जा पाबंद न आहियूं परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे सदर ट्रंप जे नुमाइंदे तौरु तहरान जो दौरो करण वारियुनि ख़बरुनि खे रद्द करे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो ईरानी दौरो चिकटाण में घटिताई वारी पाकिस्तानी कोशिशुनि जो हिसो हो पाकिस्तान रियासती सतह ते अफ़ग़ानिस्तान सां ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहे अफ़ग़ानिस्तान खे पंहिंजी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियण खे रोकणो पवंदो कतरी वज़ीर आज़म ईरान जे अहम दौरे ते तेहरान पहुची वियो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल आल सानी जो तहरान पहुचण ते पटेई वज़ीर अब्बास राक्षी आतरभा कयो मुलाक़ात दौरान ॿितरफ़नि लाॻापनि समेत ख़ते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं कतरी वज़ीर आज़म ईरानी सदर स्पीकर ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं बि कंदो अमरीका ऐं ईरान विच में जारी चिकताण जे ख़ात्मे समेत ख़ते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं अबन हरमुस जी बहाली वारो मामिलो बि होर हेठि ईंदो बैरिस्टर सैयद इफ्तखार अली गिलानी जी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौरु नामज़दगी ते नून लीग आज़ाद कश्मीर इख़्तिलाफ़नि जो शिकार राजा फारूक हैदर वटि पार्टी जे सीनियर अॻवाननि जो इजलास आज़ाद कश्मीर जे नामज़द वज़ीर आज़म ते ख़दशा ज़ाहिर राजा फारूक हैदर ऐं नून लीग आज़ाद कश्मीर जे सदर गुलशाह ग़ुलाम क़ादिर जो बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी खे वोट न ॾियण जो ऐलान फारूक हैदर चयो आहे त जेको कुझु थींदो सुभाणे सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी

किरण करे टिन भाइरन समेत चार बार मीर वाके नाल में बुडी व्या बुडी व्यल बारन में 10 सालन जो लाहौती 12 सालन जो मीर मोहम्मद 11 सालन जो मुंतजर 13 सालन जो जुनेद गोपांग शामिल गोला जारी मीर वाके नाल लिंक रोड ता कार्गो लोडर कंट्रोल मां निकरी वा में किरी पियो

नेपाल में बोर्ड ऐं लैंडस्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी। पोतिन जंग वधी 600 थी वियो। 260 परॾेहनि समेत 1300 शहरी बदस्तूर गुम। ॻोल्हा जारी। नेपाल ऐं तिब्बत जी सरहदी इलाइक़े में बोर्ड ऐं लैंडस्लाइडिंग सबबि 359 ॼणा अजल जो शिकार थिया। नेपाल ऐं चीन जो गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऐं यूक्रेन रूस खिलाफ बरतानवी हथियार ऐं सहूलियत इस्तेमाल कयूं था। बरतानिया जा फ़ौजी बाग जाइज़ हदफ़ हूंदा। रूस बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। रूसी पढ़े तर्जुमान चयो आहे त यूक्रेन सां गॾु ॿियनि मुल्कनि में बि बरतानवी अॾनि खे निशानो बणायो वेंदो। बरतानिया कुझु ॾींहं पहिरीं यूक्रेन खे जदीद मिसाइल्स जो ब्लू प्रिंट ॾियण जो ऐलान कयो हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

न तकेरा चे न कोट में अक्रब हबलल वरीद वतन आवेदास मारुन सा मिलंदास हे कोठियों छदे

जनी जाथरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सती सत न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न ल जाई जा सागल सदाई उहा मारुई

0: जीअं शल पहिरीं वञा तन ॾे लालाईअ जो लतीफ़ चए अॻियां मन मारूं अड़न जे
1: अलाहूं

समूह में

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनाम

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ असां सऊदीअ जे माहौलियात बाबति वज़ीर इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन जी मुलाक़ात बि तरफ़ लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ शुबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं। शहबाज शरीफ चयो त पाक सऊदी ऐं तुर्किया में थियल मका मुआदे में टई मुल्क वधीक वेझो आया आहिनि। मुआदे सां खिते में बि अमुन ऐं इतिहाद जो पैगाम वियो आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब इस्ट जे भाईवार आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि खे हाणे इक़्तसादी ऐं ज़रई शोबे में सहकार वधाइण घुर्जे। वज़ीर आज़म ज़रई माहिरनि जे वफ़द बि सऊदी मोकिलण जो ऐलान कयो।

चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के दौरे से आयल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शागिर्द की मुलाकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलों के खिते हैं दुनिया में अमून इस्तेकाम खुशहाली के हथी वठाने लाय कैल कोशिशन ख्याल की डेवट कई है।

फील्ड मार्शल सहदास मुनीर नौजवान की तालीम हुनर कारोबारी सलाहित हकीकतन से बदल सोच की अहमियत जोर दिनों फील्ड मार्शल सहदास मुनीर है तेजी से तब्दील गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवान के सोशल मीडिया है प्रोपोगंडा के असर के समझंदे मुस्बत पाक मकसद किरदार अदा करण घुर्ज मुलाकात कदड़ शागिर्दन मुख्तलिफ सोचन से ताल्लुक रखंदड़ शागिर्द शामिल हुआ।

आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड अॼु थींदी। कानून साज असेंबली जो इजलास अॼु थींदो। नून लीग पारां बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौरु नामज़द। नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म जे नाले ते इख़्तिलाफ़ बरक़रार। कुझु मेंबर्स खे बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानीअ ते ख़दशा आहिनि।

0: कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती कमीशन जांच शुरू करे छी। मीर रज़ा जा घर भाती है वकील जबरान नासिर कमीशन आरो पेश। मीर रज़ा जे वालिद केस जी जांच ते बेतमादी जाहिर करे छी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सयाल चयो आहे त जेको कुछ थींदो सभिनी जे साम्हूं थींदो। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में फर्क आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थो न वरी वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त जो कमीशन सां तालुक न आहे। अदालती कमीशन खे रिवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कई वेंदी।
1: खानपुर वेझो मज़दा जो मोटरसाइकिल खे टकर। हादसे सबबि चार ॼणा फोत हिकु ज़ख़्मी। फोतियुनि में खानचंद पुट रामचंद हाकिम पुट शेर ओड संदसि पुट रमेश ऐं भाई भाइटियो सोणो ओड शामिल आहिनि। फोतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मज़दा ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो।
0: कोडी जी भरसां कार्गो लोडर रक्षा वाह में किरण सबबि ॿुॾी वियल टिनि ॿारनि जी ॻोल्हा जारी। ॿुॾी वियलनि मां रुॻो ॾह वरनि जे ॿारी लाहौती जो लाश हथ, 12 सालनि जो मीर मोहम्मद, 11 सालनि जो मुंतज़िर ऐं 13 सालनि जो जुनेद गोपांग जी ॻोल्हा जारी। गुज़िरियल ॾींहुं मीर वाह केनाल लिंक रोड तां कार्गो लोडर कंट्रोल मां निकिरी वाह में किरी पियो।

0: रादण भरसा गोठ जाम जरदारी में जरदारी बिरादरी के बिन दिन में जेड़ो जरदारी बिरादरी के एक दुर पारा रादण नौ गोठ रोड से मुजाहरो कर धरणो आयो एतजाज कंदड़ इल्ज़ाम आयो तो मुखालिफ दुरवार असा के घर से हमलो कर तशद्दुद कयो आए जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ कयो वजे
1: जमाल शाह में रोड हादसे में मुलविस मजदा के पुलिस पारा छड़न खिलाफ मुतासरीन शहरों एहतजाज पुलिस ने मजदा के पैसा वी छड़न इल्ज़ाम मुजाहरीन मौजूद मजदा के टक्कर में बीगर फोत थे हुआ पुलिस हिरासत में वरतल मजदा रिश्वत वी छी है जवाबदार ड्राइवर खिलाफ कार्रवाई कई वे

0: ऐं सिंध समेत समूरी दुनिया में रहंदड़ हिंदू बिरादरीअ जी राखीअ जो मज़हब ॾिण मल्हाए रही आहे। भाउ ऐं भेण जे रिश्ते खे वधीक मज़बूत बणाइण लाइ भेनर भाइरनि खे राखियूं ॿधी रहियूं आहिनि। भाइर बि भेनरुनि जो तहफ़ुज़ वारो वचन वरजाए रहिया आहिनि। राखीअ जो ॾिणु हिंदू धर्म जे आम ॾिणनि मां हिकु आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे, तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे, अखड़ियों मिलाए जल्द लिखाए हलियो वे, तू दिल तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे, अखड़ियों मिलाए जल्द लिखाए हलियो वे, जड़े ॾिसण जी मुंह कई कोशिश लिखी वे, जॾहिं ॾिसण जी मूं कई कोशिश लिखी वए, मुंहिंजो सुकून तूं ई फिटाए हलियो वे, तुंहिंजे हुस्न रंद खे सम्झी नथो सघां, तुंहिंजे हुस्न रंद खे सम्झी नथो सघां, मुर्की अखियूं अखियुनि सां मिलाए हलियो वए।

त मुंहिंजा मिठा साईं जेके बि मूंखे हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहियो त तव्हांखे मां ॿुधायां जीएम ओरो एफएम एचए जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं यारहें वॻे खां वठी हिकु वॻे ताईं हींअर कयो वेंदो आहे जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस। अच्छा हाणे मैसेज करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो अथव आसान अथव। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, ए मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां हां 888-1 ते। छा ते मोकिलींदा? 888-1 ते उन ते लिखी करे मोकिलींदा, मूंखे तव्हांजे मैसेज जो बि इंतज़ार रहंदो। त मुंहिंजा वेठा चवंदा आहिनि त ज़िंदगी किराए जो घर आहे। असां हिन दुनिया में अहिड़ी तरह ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं ॼण त हमेशह हिते रहणो हुजे, हालांकि हक़ीक़त उहा न आहे। हक़ीक़त हिन दुनिया में असांजो क़याम रुगो कुझु ॾींहंनि जो आहे। नंढपिण खां वठी जवानी, जवानी खां पोइ पोढ़ाए पई, पोइ वरी हिकु ॾींहुं ख़ामोशीअ सां हिन दुनिया मां मोकिलाए वञिणो आहे। ज़िंदगी जो सफ़र बसि एतिरो ई अथव। पोइ ताक़त, गुरूर, दौलत, ख़ूबसूरती, दुनियावी मसरूफ़ियातूं आख़िर कहिड़े कम जूं आहिनि? जिस्म जंहिं ते अॼु असां नाज़ करे रहिया आहियूं हिकु ॾींहुं उहो कमज़ोरु थी वेंदो, जंहिं माल खे गॾु करण में असां पंहिंजी सॼी ज़िंदगी लॻाए छॾी आहे न, उहो सभु कुझु हिते ई रहिजी वेंदो। ऐं जिन माण्हुनि ख़ातिर असां पंहिंजे रब खे नाराज़ कयो, उहे बि हिकु ॾींहुं असांखे छॾे हलिया वेंदा। वक़्तु वापसि नथो अची सघे, पर तौबा जा दरवाज़ा अञा बि खुलियल आहिनि। अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, उनजे करे जेतिरी तौबा थी सघे ओतिरी करणु घुरिजे। अॼु बि मौको तव्हां वटि मौजूदु आहे, असां पंहिंजी ज़िंदगी जो रुख बदिलाए सघूं था। निवास खे मज़बूती सां करियो, क़ुरान पाक खे साउन सां पंहिंजो तालुक़ खे जोड़े छॾियो, जेके वालदेन आहिनि उन्हनि जी क़दुरु करियो, माण्हुनि जा हक़ अदा करियो, दिलनि मां गुरूर तकबुरु कढी छॾियो ऐं अलाह ताला सां पंहिंजे तालुक़ वधीक मज़बूत करियो। यादि रखो, हीअ दुनिया मंज़िल नाहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। छा? हीअ दुनिया मंज़िल नाहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। असल कामयाबी उहा नाहे त असां दुनिया में केतिरो कमायो, केतिरी दौलत गॾु कई या केतिरी शोहरत हासिल कई। असल कामयाबी उहा आहे त जेकॾहिं असां हिन दुनिया मां वञूं, तॾहिं असांजो रब असां सां राज़ी हुजे। हिकु ॾींहुं अहिड़ो ज़रूरु ईंदो जॾहिं न मोबाइल हूंदो, न पैसो हूंदो, न कारोबार हूंदो, न शोहरत हूंदी, न नालो हूंदो, न दोस्त हूंदा, न मित्र हूंदा, न माइट हूंदा, केर बि न हूंदो, सिर्फ़ु माण्हू अकेलो हूंदो ऐं असांजा अमल असां सां गॾु हूंदा। तंहिं करे उन खां अॻु जो ज़िंदगी जो ही जेको सफ़र आहे न उहो ख़तमु थी वञे, पंहिंजे रब सां तालुक़ु मज़बूत करे वठो, पंहिंजे दिलि खे जाॻायो, पंहिंजे अमलनि जो जाइज़ो वठो ऐं तौबा लाइ देरि न करियो, छो त ख़बर न आहे ज़िंदगी जे हिन सफ़र में असां वटि केतिरो वक़्तु आहे। अलाह ताला असां सभिनी खे किफ़लत मां बेदार करे नेक अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वालदेन जी ख़िदमत करण ऐं माण्हुनि जो हक़ अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान सां ख़ात्मो नसीब फ़रमाए, आमीन। प्रोग्राम ई ॾाढो हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे नाहिद अख़्तर जे आवाज़ में, अचो गॾु गॾु उनखे बि इंजॉय कंदा हलूं।

अल्लाह ही हला किया करो दुख न किसी को दिया करो इहो ही जो मैसेज है इन्हें ते अमल कजो इंशाल्लाह ताला तवां पाजी जिंदगी कामयाबी से गुजारिंदा दोस्तों ने कुछ मैसेजेस आए वे भी पाने प्रोग्राम में शामिल कंदा लोग दूरो बेण का शौकत अली बेण जो पैरो पैरो मैसेज मुझे प्रोग्राम में आया है अदा सा गदा है नादर अली बेण अली गुल बेण आए चवंदा आदा गुलाब सलाम वालेकुम सलाम मुझे मिठा ताजन चवंदा शाहिद बाबा जो कलाम उतरायो तो हाजिर मुझे मिठा साईं ता जो पैरो मैसेज असन प्रोग्राम में आया है जरूर ता के शाहिद बाबा जे आवाज में कलाम बुधराई दस या तहां गारंटी समझो आई जुल्फकार बेण जेको आहे न ओ उनसा गदा है डेडिकेट करे थो जुल्फकार बेण के आई जरियाब बेण आई रियाज अली बेण के बड़ी मेहरबानी मुझे मिठा साईं तवा सने प्रोग्राम में शामिल थे आयो तवा जा लख कुर्ब लख एहसान ता जे लाई खोड़ सारी मोहब्बत खोड़ सारो प्यार आहे गोठ हाजी दलेल जरदारी खान सावर खान जरदारी पने प्रोग्राम दे बेचो सर सलाम त वालेकुम सलाम जरदारी साहब केड़ा हाल है नवाजा ठीक है तो सही है वाजी अदाजन चवन था मुमताज लाशारी जी कलाम असा के बुधा था मुमताज लाशारी जो मुझे प्लेलिस्ट में डाड़ो जबरदस्त सॉन्ग है इंतजार कजो जरूर बुधजो उनके तक डाढ़ो इंशाल्लाह पसंद अची वो डेडिकेट करे तो भूरो खान लाखो गुलाम सरवर बागाई के अदा भूरो खान लाखो असो पुरानो लिसनर है बेहतरीन गुलाम सरवर बागाई भी इन ही सागे तरीके से असा लिसनर आन वही मेहरबानी तवी मुझा मिठा सही तुम्हारे प्रोग्राम में शामिल थे गोठा जी गुलाम अली खास के लिए लग जिंदो मोरिए खां कुर्बान अली खास के लिए बुधे पे वदा कुर्बान केड़ा हाल है तवाजा मैं कुर्बान वजा तो खुश रही तैयार रही तबियत सही थी उम्मीद है अल्लाह ताला तो ना भी बिल्कुल खैर खैरियत कही होंगी गोठ जीअंद अली जुनेद अली है या जीअंद अली सरदारी खां गुलाम सरवर बागाई अदा बागाई साहब तुझे गोठ जो नालो है बरए करम बे मैसेज में थोड़ो क्लियर लिखो मुझे अना थोड़ी समझ में न पे हुए चवे तो सर सलाम तो वालेकुम सलाम मुझा भा चवन था असा के जलाल जोगी जो कलाम बुधरा हाजिर मुझा मिठा सही जलाल जोगी तक छो न बुधराइंदी डेडिकेट करे तो भूरो खान लाखो आजिज अमानुल्ला विस्तड़ो के मेहरबानी मुझा मिठा मौला तवा सभी के सलामत रखे खुश हो जो आबाद हो जो ये शो तवा जो आए असा तवा जो आयो जी एफ एम नेटवर्क तवा जो आए जेके बस अन्य लिसनर्स आहिन जेके अस प्यारा प्यारा पुराना लिसनर्स आहिन जेके अस नवा लिसनर्स आहिन जेके बस अंगे बुधंदा आहिन उनन जेई तवसुल

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: किताब पढ़ी वल रोवल खौफ कनु हिक रब दे रात ओडी हां डरी वल ए सब गाल्या ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल ललस रुगो मूजा विचित मरी वल
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

त असां सां गॾु पड़ी दिन खां अस्मा अस्मा कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे? अव्हांजी पुराणियूं लिसनर्स आहियो असांजो ऐं तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थींदा आहियो। मुंहिंजे तरफ़ खां स्पेशली तव्हांखे हिकु न ॿ न टे न चार न पंज दफ़ा भलीकार, बल्कि पूरे हफ़्ते जे लाइ भलीकार, सत दफ़ा भलीकार। ऐं असां चवे थी त सर शो बहुत अच्छा है आपका, महिरबानी तव्हां असांजे शो खे पसंदि करे रहिया आहियो ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असां सां जुड़ियल रहो। ऐं उमेदु आहे त इन खां वधीक अञा जी एफ एम नेटवर्क ते तव्हांखे शो ॿुधण जे लाइ मिली वेंदा। घोटु उमेद अली दरदारी खां गुलाम सरवर बाघाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सर सलाम। वालेकुम असलाम, अलाह कंदा ख़ुशि हूंदा। जी हाँ बिल्कुलु, अलाह जी महिरबानी आहे, रब करीम जा लख लख अहसान आहिनि, किरोड़े करम आहिनि। मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां ऐं अदा डेडिकेट करे थो सॉन्ग जेको आहे न उहो अदे भूरे इलाइक़े खे ऐं आज जा माण्हू लाइ विसोड़ खे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि, तव्हांजो प्यारु आहे। रोड़ी सकर खां नज़ीर अहमद मंगरियो पाण खे ॿुधी रहियो आहे। अदा रोड़ी वारा भाउ कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे अव्हांजी? ऐं उमेदु आहे त तव्हांजे ख़ैरियत खे ईंदी। हफ़ीज़ सोलंगी फ्राम मोरो खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हफ़ीज़ कहिड़ा हाल अथई? ठीकु आहे पुटु। ऐं चवे थो अदा सलाम, मां काफ़ी टाइम से एफ एम सुनता हूं, मगर एस एम एस पहली बार कर रहा हूं। मेरे तरह से आपको और आपके पूरी टीम को और सब अपने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जी हाँ अदा वालेकुम असलाम, ऐं तव्हां असांजा पुराणा लिसनर रहियो, पर मैसेज तव्हां पहिरियों दफ़ो कयो। अदा हाफ़िज़ मैसेज कंदा कयो, शामिल थींदा कयो। इन सां छा थींदो आहे त हिकु त जेको प्रोग्राम कंदड़ आरजे हूंदो आहे उनखे ख़बर पवंदी आहे त मूंखे कहिड़ा दोस्त किथां खां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं केतिरो असांजे हिन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कनि था। उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त तव्हांजी ख़ुदि जी सुञाणप बि थींदी आहे। तव्हां पंहिंजा जेके बि असांजा लिसनर्स हूंदा आहिनि न, तव्हां इहो न सोचियो त सिर्फ़ु असांखे मोरो ॿुधी रहियो आहे, हिन वक़्तु असांखे पूरी सिंध ॿुधी रही आहे, पूरी दुनिया में किथे बि जेको आहे न माण्हू असांखे असांजी वेबसाइट जे ज़रिए ॿुधी रहिया आहिनि। त उन्हनि सभिनी में हफ़ीज़ अहमद सोलंगी फ्राम मोरो उनजो नालो ओसोड़ी पहुचे थो। इन जे करे तव्हां प्रोग्रामनि में शामिल थींदा कयो, तव्हांखे मुंहिंजे तरफ़ खां 10 दफ़ा भलीकार। ठीकु आहे? ऐं अदा जन चवंदा त असांखे फौजिया सूमर जो कलाम ॿुधायो, त हाज़ुर फौजिया सूमर खे ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। त मुंहिंजा मिठा साईं, मोहबत दुनिया जो उहो ख़ूबसूरत अहसासु आहे न जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे। छा मोहबत दुनिया जो उहो ख़ूबसूरत अहसासु आहे जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे। जॾहिं कंहिं शख़्स सां सची मोहबत थी वञे थी न त उनजी ख़ुशी पंहिंजी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे, उनजो ॾुकु पंहिंजो ॾुकु लॻंदो आहे ऐं उन जी मुस्कुराहट पंहिंजी मुस्कुराहट लॻंदी आहे। उनजी मुस्कुराहट ज़िंदगी जी सभ खां वॾी ख़ुशी बणिजी वेंदी आहे। सची मोहबत इंसान खे ख़ुदगर्ज़ीअ खां कढी क़ुर्बानीअ जी राह ते आणे बीहारींदी आहे। कंहिं शख़्स जी मोहबत में पाण सदको करण जो मतिलबु उहो न आहे त इंसानु पंहिंजो वजूद, इज़त या ज़िंदगी खे ख़तमु करे छॾे, न मुंहिंजा जानी। उन जो असुलु मतिलबु उहो आहे त पंहिंजे महबूब जी ख़ुशी, इज़त ऐं सुकून जे लाइ पंहिंजी अना ज़िद ज़ाती ख़्वाहिश मां कुझु क़ुर्बान करणु ऐं मोहबत में मान जी जाइ ते असी, न मोहबत में मां जेका असां चवंदा आहियूं उनजी जाइ ते असी अची वञे त रिश्तो वधीक ख़ूबसूरत बणिजी वेंदो आहे। मोहबत में क़ुर्बानी ॾियणु हिकु वॾी ख़ूबी हूंदी आहे, पर उहा क़ुर्बानी ॿिन्ही तरफ़नि खां हुअणु घुरिजे। जेकॾहिं हिकु माण्हू हर वक़्तु ॾिए ऐं ॿियो रुॻो वठंदो रहे त उहा मोहबत आहिस्ता आहिस्ता हिकु तरफ़ी वाबस्तगी बणिजी वेंदी आहे। सची मोहबत में ख़्यालु, इज़त, वफ़ादारी, क़ुर्बानी ऐं ॿिन्ही तरफ़नि खां हुजणु तमामु घणो ज़रूरी हूंदी आहे। मोहबत इंसान खे मज़बूत बनाए थी, कमज़ोर नथी करे। जेकॾहिं कंहिंजी मोहबत तव्हांखे पंहिंजी राति खां नफ़रत करणु, पंहिंजे ख़्वाबनि खे दफ़न करणु या हर वक़्तु ॾुखु बर्दाश्त करण ते मजबूर करे थी न, त उते मोहबत सां गॾु सोचण जी ज़रूरत आहे। छो त सची मोहबत में क़ुर्बानी ज़रूरी हूंदी आहे, पर पाण खे विञाए छॾणु ज़रूरी नाहे हूंदो। रऊफ़ मक्सीअ जो ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत सॉन्ग मुंहिंजी प्ले लिस्ट में मौजूदु आहे, अचो त उनखे इंजॉय कयूं।

0: صحت حکومت سندھ.
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस. बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस. निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. इदान दवाखाना नर्द अछी मस्जिद दर्श रोड मोरो. राब्ते लाइ फ़ोन करियो 0301-3646-4059. निजात बवासीर कोरस. सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम.
2: तव्हां या तव्हां जा प्यारा हॾनि ऐं जोड़नि जी तकलीफ़ुनि में मुबतला आहिनि, हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. अव्हां जे पंहिंजे शहर मोरो में हॾनि जी बीमारियुनि जो माहिर ऐं कुदरती फिरियल पेरनि जे इलाज जो माहिर डॉक्टर नजीब रहमान कलोड़ो, MBBS MS आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जंहिं वटि मौजूद आहिनि जदीद ऑपरेशन ऐं मौसर इलाज जूं सहूलियतूं. हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सायरा नादर, MBBS RMP DGO, औरतुनि जे हर किस्म जी बीमारियुनि, चेकअप, सलाह मशवरे ऐं इलाज जूं बहितरीन सहूलियतूं हाणे अव्हां जे शहर में मौजूद आहिनि. रोज़ानो मंझंदि 1 वॻे खां शाम 7 वॻे ताईं. एड्रेस: दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स, बांधी रोड, मोरो. हाणे राब्तो करियो. राब्ते जे लाइ सैद गुलाम मुर्तज़ा शाह, एडमिनिस्ट्रेटर. कॉन्टेक्ट नंबर 0321-8284-594 ऐं 0304-036-381. अच्छन वारन खां परेशान आयो? पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर. पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश. पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या कंहिं ख़ासि मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बहितरीन अंदाज ज़ाहिर करियो. आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख़्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी. अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग. आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद. जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस. हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे. ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं. इदनान दवाखाना नर्द अछी मस्जिद दर्श रोड मोरो. राब्ते जे लाइ फ़ोन करियो 0301-3646-4059. खात्मा दर्द कोरस. सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

प्रोग्राम में दोस्तों मैसेजेस भी गॾु शामिल कंदा हलंदासीं। तव्हांखे तव्हांजे पसंद जी चूंड मौसीक़ी बि ॿुधाईंदासीं। तव्हां सां मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं बि असांजो जारी वसारे रहंदो। पने अकल खां साईं इमदाद अली शाह असां सां गॾु आहे। साईं मुंहिंजा कहिड़ा हाल अथव? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? तव्हां ख़ुशि आहियो? घर वारा तव्हांजा सभु ख़ुशि आहिनि? दोस्त यार पाड़े ओड़े वारा बि तव्हांजा ठीकु आहिनि? उमेद आहे अलाह ताला सभिनी ॾांहुं ख़ैरियत कई हूंदी। अदा जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा भाउ। चवंदा भाईजान आपका प्रोग्राम नाइस है, महिरबानी अदा, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो था। मुमताज़ मोलाई जे आवाज़ में अदा जन चयो आहे त असांखे कलाम ॿुधायो। ऐं अशोक नवाबी शायदि बोल हुनजा इन आहिनि ऐं डेडिकेट करे थो ताहिर लुड ऐं रियाज़ चिस्काणी खे। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। लख कुर्ब लख अहसान अव्हांजा। ॻोठ दूरो भेण खां शौकत अली भेण ऐं नादिर अली भेण जो ॿियो मैसेज असांजे प्रोग्राम में आयो आहे। ऐं अदा जन शाहिद बबर जे कलाम जी फरमाइश कई आहे। डेडिकेट कंदा ज़ुल्फ़कार अली भेण, ज़रियाब भेण खे ऐं रियाज़ अली भेण खे। वॾी महिरबानी मुंहिंजा मिठा, तव्हांजो ही ॿियो मुंहिंजो प्रोग्राम में मैसेज आहे। उन जे लाइ लख कुर्ब अव्हांजा, लख अहसान अव्हांजा, ऐं स्पेशली मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे मां भलीकार चवां थो। त मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे शो में शामिलु थी सघो था बज़रे SMS। SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आसान। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो। स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते।

कराचीअ जे वापारी मीर रज़ा खे सॼे अदालती कमीशन जांच शुरू करे छॾी। मीर रज़ा जा घर भाती ऐं वकील जिब्रान नासिर कमीशन आॾो पेश। मीर रज़ा जे वालिद केस जे जात ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सियाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं थींदो। इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थो न वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त कमीशन सां तालुक़ु न आहे। अदालती कमीशन

मीर मोहम्मद 11 सालनि जो मुंतज़िर ऐं 13 सालनि जे जुनैद गोपांग जी ॻोल्हा जारी। गुज़िरियल ॾींहुं मीरवा किनाल लिंक रोड तां कार्गो लोड कंट्रोल मां निकिरी वाह में किरी पियो। कराचीअ में सी टी डी जे असाज़ इदारे सां गॾियल कार

0: ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी तंज़ीमुनि जा मुज़ाहिरा पटीदनि में क़ौमी अवामी तहरीक पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो कंदकोट में जसकम सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली कढी अॻवाणनि चयो त सिंध हिकु आहे ऐं हमेशह हिकु रहंदी राधण भरसां ॻोठ जाम ज़रदारी में ज़रदारी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो ज़रदारी बिरादरीअ जे हिकु धुर पारां राधण नओं ॻोठ रोड ते मुज़ाहिरो करे धरणो हयो एहतजाज कंदड़नि इल्ज़ाम हयो त मुख़ालिफ़ धुर वारनि असांजे घरनि ते हमिलो करे तशदुद कयो आहे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कारवाई करे इंसाफ़ कयो वञे जमाल शाह में रोड हादसे में मुलविस मज़दा खे पुलिस पारां छॾण ख़िलाफ़ मुतासिर ऐं शहरनि जो एहतजाज पुलिस ते मज़दा खां पैसा वठी छॾण जो इल्ज़ाम मुज़ाहिरीन मुझ मज़दा जे टकर में ॿनी घर फोत थिया हुया पुलिस हिरासत में वरितल मज़दा रिश्वत वठी छॾी आहे जवाबदार ड्राइवर ख़िलाफ़ कारवाई कई वञे ऐं सिंध समेत समूरी दुनिया में रहंदड़ हिंदू बिरादरीअ जो राखीअ जो मज़हबी ॾिणु मल्हाए रही आहे भाउ ऐं भेण जे रिश्ते खे वधीक मज़बूत बणाइण लाइ भेनर भाइरनि खे राखियूं ॿधी रहियूं आहिनि जॾहिं त भाइर बि भेनरुनि जे तहफ़ुज़ वारो वचन वरजाए रहिया आहिनि राखीअ जो ॾिणु हिंदू धर्म जे आम ॾिणनि मां हिकु आहे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: फटिया पिया चिकन चाक

ॻाल्हि कर ख़बर सभु मड़ाया सोन में पखी तुजा पर ओ भूमि मथां घर।

God, hallelujah.

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस के जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

तासे ऐं असांजो मूंखे अदा जन मैसेज कयो हुयो के त असांखे जलाल जोगी ॿुधायो त जलाल जोगी उन्हनि जे लाइ आहे, न सिर्फ़ु उन्हनि जे लाइ बल्कि जेके बि असांजा लिस्नर्स आहिनि सभिनि जे नाओ आहे।

जलाल जोगी जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजी सुंदर समातूं। अच्छा ही जलाल जोगी जी जेका फरमाइश मूंखे कई हुई न अदा उमेद अली ज़रदारी जी ॻोठ खां गुलाम सरवर बागाई कई हुई त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हांजे नां ही स्पेशल सॉन्ग मां करे छॾियो आहे। वॾी महिरबानी आहे तव्हांजी। त हिन वक़्तु प्रोग्राम में दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि उहे शामिल कंदा था हलूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो वेरी नाइस है। अच्छा ठीकु आहे, महिरबानी मुंहिंजा भाउ, तव्हांखे मुंहिंजो शो पसंदि अचे पियो, हुनजे लाइ लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा। ऐं असां सां गॾु आहे केरु, ख़बर आहे, मोहम्मद तैयब थेबो ॻोठ जो नालो आहे, ऐं उतां खां अदा हबीबुला थेबो असां सां गॾु आहे। अदा हबीबुला कीअं आहियो? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे तव्हांजी? तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भली कार चवां थो। थैंक यू वेरी मच ॻोठ उमेद अली ज़रदारी खां। ग़ुलाम सरवर बागा ई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा ग़ुलाम सरवर तव्हांजे पसंदि जो कलाम ॾिसो मां प्ले करे छॾियो आहे। थैंक यू वेरी मच। ख़ुशि थी विया हूंदा ऐं उमेदु आहे त तव्हांखे इहो सॉन्ग पसंदि आयो हूंदो। चवे थो अलाह कंदो ख़ुशि हूंदा। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, इअं ई दुआऊं कंदा रहो। मूंखे दुनिया में अगरि सभ खां वधीक जंहिं शइ ज़रूरत आहे उहा आहे दुआउनि जी ज़रूरत, त तव्हां मूंखे अहिड़े तरीक़े सां दुआ कंदा रहो। महिरबानियूं आहिनि तव्हांजूं। ऐं डेडिकेट करे पियो सांवल खान ज़रदारी ऐं भूरो खान लाखो खे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा, मौला तव्हांखे आवाज़ रखे ख़ुशि हुजो। पनो आकिल खां सैयद इमदाद अली शाह पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, चए थो अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अदा जन जो ही शायदि ॿियो मैसेज आहे, चए थो आपका प्रोग्राम नाइस है। मुमताज़ मौलाई का मुमताज़ मौलाई जो कलाम असांखे ॿुधायो, जेको डेडिकेट करे थो ताहिर लुणई रियाज जिस कहाणीअ खे। अच्छा अदा अब्दुल हफ़ीज़ मोरो खां असांखे मैसेज कयो हुयो ऐं अदा जन फरमाइश कई त मूंखे तव्हां न ॿुधायो फौजा सुमरे जे आवाज़ में कलाम। दादा पहिरियों दफ़ो तव्हां मैसेज कयो, इन जे करे दिलि चए तव्हांखे कलाम ॿुधायो। ऐं हालांकि फौजा सुमरो जो आवाज़ ॾाढो प्यारो आहे, न सिर्फ़ु तव्हांजी पसंदि आहे पर इलाही सिंध में माण्हू उनखे तमामु घणो पसंदि कंदा आहिनि ऐं हिन कलाम खे बि अहिड़े तरीक़े सां पसंदि कंदा ऐं इंजॉय कंदा।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन खे अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स, एक्ने ऐं स्कार्स घटाए स्किन खे बणाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब. आर्च ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड. तव्हां या तव्हां जा प्यारा हॾनि ऐं जोड़नि जी तकलीफ़ुनि में मुब्तला आहिनि? हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे. अव्हां जे पंहिंजे शहर मोरो में हॾनि जी बीमारियुनि जो माहिर ऐं कुदरती फिरियल पेरनि जे इलाज जो माहिर डॉक्टर नजीब रहमान कलहोड़ो, MBBS MS आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जंहिं वटि मौजूद आहिनि जदीद ऑपरेशन ऐं मौसर इलाज जूं सहूलियतूं. हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सायरा नादर, MBBS RMP DGO, जिस्ट औरतुन जे हर किस्म जी बीमारियुनि चेकअप, सलाह मशवरे ऐं इलाज जूं बहितरीन सहूलियतूं हाणे अव्हां जे शहर में मौजूद आहिनि. रोज़ानो मंझंदि 1 वॻे खां शाम 7 वॻे ताईं. एड्रेस: दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स, बांधी रोड, मोरो. हाणे राब्तो करियो. राब्ते जे लाइ सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह, एडमिनिस्ट्रेटर. कॉन्टेक्ट नंबर 0321-8284-594 ऐं 0304-037-6381.
4: क्या आप महंगे इलाज और ऑपरेशन के बगैर शिफा चाहते हैं? तो मिलिए इस्लामाबाद की मशहूर मारूफ खानदानी होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर फराज कामरान, TA चेयरमैन, MDH, RHMP, 25 साल से ज्यादा तजुर्बेकार. हर किस्म की बीमारियों का इलाज बगैर ऑपरेशन. माहिर अमराज, गुर्दे और मसाने की पथरी, होमियोबादी बवासीर, हर किस्म का बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार, दमा, मैदे के अमराज, अल्सर, बदहजमी और एच पाइलोरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अर्कुन निसा, जिस्मानी असाबी और दिमागी कमजोरी. मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के इलाज के लिए तशरीफ लाएं. एड्रेस: आलमानी मेडिकल सेंटर, दादू रोड, मोरो. मजीद मालूमात के लिए राबता नंबर 0318-404-217, 0318-40-40-217.
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस. हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे. ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधि हर छंछर ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं, इदनान दवाखाना नर्द, अची मस्जिद, दर्श रोड, मोरो. राब्ते जे लाइ फोन करियो 0301-3646-459. ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी.
6: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर मानो जो सवाल होता है असा के सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तक चौथी दिनी वने तो जो असावट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र की हद कोने कैं जगह वैक्सीन कैं भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कैं उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो वधी का 10 साल के घट आ तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए तो सभी के बूस्टर डोज लगराए।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: सहूलतूं हाँ अवां जे शहर में मौजूद आहिन। रोजानो मंझंद 1 वगे खां शाम 7 वगे ताईं। एड्रेस: दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स, बांधी रोड, मोरो। हाने राब्तो करियो। राब्ते जे लाए सेठ गुलाम मुर्तजा शाह एडमिनिस्ट्रेटर। कॉन्टेक्ट नंबर 0321-822-8459-4
1: जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वडे सूर खां परेशान आयो? छा इलाज कराए कराए थकजी पिया आयो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। एक आजमायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वगे ताईं इदनान दवाखाना नज़द अची मस्जिद दर्श रोड, मोरो। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0301-3646-459। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
2: क्या आप महंगे इलाज और ऑपरेशन के बगैर शिफा चाहते हैं? तो मिलिए इस्लामाबाद की मशहूर और मारूफ खानदानी होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर फराज कामरान, टीए चेयरमैन, एमडीएच, आरएचएमपी, 25 साल से ज्यादा तजुर्बेकार, हर किस्म की बीमारियों का इलाज बगैर ऑपरेशन, माहिर अमराज, गुर्दे और मसाने की पथरी, खूनियों बादी बवासीर, हर किस्म का बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार, दमा, मैदे के अमराज, अल्सर, बदहजमी और एच पाइलो

0: कराचीअ जे वापारी मीर रज़ा खे सॼी अदालती कमीशन जांच शुरू करे छॾी। मीर रज़ा जा घर भाती ऐं वकील जिब्रान नासिर कमीशन आॾो पेश। मीर मुर्तज़ा जे वालिद खे सॼी जांच ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सियाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं ईंदो। इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थी न वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त कमीशन सां तालुक न आहे। अदालत कमीशन खे रवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सुवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिशि कई वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

हे हुसन दामल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदावे विच अरब सुना जावे जात सिफात दा है कुर्सी अर्श ते हूर मलक अकसुई आली दर्जात दा है शमा हुसन दा

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

Tony.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल लायल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन।
0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

कराची के व्यापारी मीर रज़ा केस की अदालती कमीशन जांच शुरू कर छी। मीर रज़ा जहा घर भाती है वकील जबरान नासिर कमीशन आरो पेश। मीर रज़ा के वालिद केस की जांच से बेअतमादी जाहिर कर छी। केस की जांच कदड़ कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल जो कुछ सभी के सामू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन कर सके तो न वही वो वजीर अवां की दरख्वास्त जो कमीशन से ताल्लुक ना है। अदालती कमीशन के रिवायती अंदाज में न हल्दी कमीशन अवां के समूर सवाल जवाब घुरण की कोशिश कई वी।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी के माहौलियात बाबत वजीर इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन की मुलाकात बितरफन लागापन समेत मुख्तलिफ़ शोबन में सहकार से गालियों। शहबाज शरीफ चे तो पाक सऊदी और तुर्किया में थियल मकाम मुआहदे बाद टई मुल्क वेझो आया है। मुआहदे से खिते में भी अमुन इतिहाद जो पैगाम आयो है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटजिक भाईवार बिन्हीं मुल्क के हाँ इकतसादी और ज़रई शोबे में सहकार वधाण घुर्जे। वज़ीर आज़म ज़रई माहिर जो वफद भी सऊदी मोकलण जो ऐलान कयो।
1: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा एफ सी जे ट्रेनिंग सेंटर शबकदर जो दौरों एंटी राइट विंग के खसूसी तरबियती मशकन जो जायजो वरतो वो। मोहसिन नकवी पारा एहलकारन के पेशावरानी सलाहियतन जदीद तरबियत ए ऑपरेशनल तैयारियों की सारा। मोहसिन नकवी है तो पुरमन एहतजाज सभी हक है, कानून हथ में खण की इजाजत न डनी वी।
0: रूस कें भी नेटो मेंबर से हमलो न कंदो। सीआई सरबराह के मास्को के दौरे जो मकसद खास पैगाम मोकलन न हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो जॉन रिटर छह महीनों या साल में पांजे रूसी हमनसब से मुलाकात कंदो आए। संदस मास्को वे दौरे जो मकसद खास पैगाम पहुंचाण न हो। आबनार बाबत रूस जो रवैयो मुसबित हो। ईरान वट फौजन के पगार डण जितरा पैसा ना रहा। आबनार के भी बारूदी सिरंगन का साफ कर छो है।
1: ईरान और ओमान विच में आबना हरमुज में वक्ती रस्तो खोलण ते इतफाक थी वियो आहे। राहदारी जो एक अड़ो हिस्सों ईरान ए बो हिस्सों ओमानी पाणन में होंद। बे मुल्क गडियल तौर से इजाजन के अचवन जो इंतजाम दिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई है तो आबना हरमुज जो लंघ वाजे तौर से तयन कर छो है। अमेरिका से भरोसा ना माजी में भी वॉशिंगटन गाल दौरान धोखा डी रो है। अमेरिका ईरानी शर्त मना तो आबना हरमुज बीहर मुकम्मिल तौर से खुली दी।
0: रेहट सब रजिस्ट्रार पारा सत्रहें ग्रेड में प्रमोशन न वठण वाले मामले जो वडे वजीर नोटिस वरतो। सब रजिस्ट्रार पारा तरक्की न मिलने जा तफसील तलब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वडे वजीर नोटिस बाद सब रजिस्ट्रार की तरक्की न मिलने वाले आर्डर से मुकमल रुक छो। मुराद अली शाह केतर ही पोस्टू खाली आन केतर सब रजिस्ट्रार प्रमोशन वठण का इनकार कर तफसीली रिपोर्ट पेश कई वे। 13 सब रजिस्ट्रार तरक्की न वठण की लिखत में दरख्वास्त कई हुई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर मान जो सवाल होंगे असा सही पोलियो की वैक्सीन दह साल चौथी डी वे तो असर जो बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके रेशो दह साल घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असावट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आए, उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रूस कहें भी नेटो मेंबर ते हमलो न कंदो। सीआईए सरबराह जे मॉस्को जे दौरे जो मकसद भी खास पैगाम मोकलण न हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जॉन चइनि महीननि या साल में पंहिंजे रूसी हमलनि सां मुलाक़ात कंदो आहे। संदसि मॉस्को वारे दौरे जो मक़सदु ख़ासि पैगाम पहुचाइण न हो। आपने हरमुस बाबति रूस जो रवैयो मुस्बत हो। ईरान वटि फ़ौजनि खे पघार ॾियण जेतिरा बि पैसा न आहिनि रहिया। आपने हरमुस खे बि बारूदी सुरंगनि खां साफ़ करे छॾियो आहे। ईरान ऐं ओमान विच में आपने हरमुस में वक़्ती रस्तो खोलण ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। राहदारीअ जो हिकिड़ो हिसो ईरानी ऐं ॿियो हिसो ओमान पाणिन मां हूंदो। ॿिए तरफ़ मुल्क गॾियल तौर ते जहाज़नि जे अचवञ जो इंतिज़ाम ॾिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त आबन हरमुस जी लंघ जो वाज़े तौर ते ताइन करे छॾियो आहे। अमेरिका ईरानी शर्त मञिया त आबन हरमुस ॿीहर मुकमिल तौर ते खुली वेंदो। परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ अमेरिका खे इतमाद बहाल करणो पवंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परॾेही वज़ीर आकान सां राबितो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि चार मुल्की परॾेही वज़ीरनि जे इजलास बाबति बि तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। खिते जी सूरतयाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक जी मुलाक़ात। सिंध जे गैस ऐं तवानाई वारे मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वई। वॾे वज़ीर पारां गैस फीड्स सूबाई हुकूमत हवाले करण जो मुतालबो। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध मुल्क में सभ खां वधीक गैस पैदा कंदड़ सूबो आहे। सिंध जे आइनी हक़नि जो एतराम कयो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त सिंध हुकूमत जे गैस वसीलनि बाबति मौक़िफ़ ऐं तजवीज़नि खे अहमियत ॾियूं था। मसइला जल्द हल कया वेंदा। 63 सब रजिस्ट्रार्स पारां 7 ग्रेड में प्रमोशन न वठण वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वरितो। सब रजिस्ट्रार्स पारां तरक़ियूं न मिलण वठण तां तफ़सील तलब। सीनियर मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॾे वज़ीर जे नोटिस सब रजिस्ट्रार जी तरक़ी न वठण वारे आर्डर ते अमल रोके छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त केतिरियूं ई पोस्टूं ख़ाली आहिनि ऐं केतिरनि ई सब रजिस्ट्रार्स प्रमोशन वठण खां इनकार कयो। तफ़सील रिपोर्ट पेश कई वञे। 63 सब रजिस्ट्रार्स तरक़ी न वठण जी लिखत में दरख़्वास्तूं कई हुई। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण वफ़ाक़ी हुकूमत खां सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे खे तरजीह ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त कराची खां रोड़ी रेलवे ट्रैक वारो मनसूबो अहम आहे। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे खे बि अहमियत ॾिनी वञे। सिंध जो आवाम ढिघे अरसे खां सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे जो इंतज़ार करे रहियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत रिथा ते कम जे 3 लाइन सूबे खे ॾे। डीआईजी लाड़काणो नासिर आफ़ताब पठाण बदिली। डीआईजी सखर मुक़रर। शिराज़ नज़ीर अब्बासी खे डीआईजी लाड़काणो लॻायो वियो। नोटिफिकेशन जारी।

0: मुंहिंजा चारि पुट लुड़ी विया आहिनि, हिकिड़ो बि असां पाण लधो आहे महिल ताईं कारेस टूटूं न आई आहे, न को इहो आयो आहे पंहिंजो टीम आई आहे महिल ताईं, हिन महिल ताईं राति खां वठी असांजा पंहिंजा दोस्त संग सां मिट माइट लथा पिया आहिनि, कोई टीम वारो न आहे।
1: चारि ॿार असांजा किरिया आहिनि, उन में असां हिकिड़ो पंहिंजी मदद पाण करे असां कढियो आहे, बाक़ी टे ॿार असांजा अञा ताईं न लथा आहिनि।
2: कोट जी भरिसां लोडर रक्षा वाह में किरण सबबु बुॾी वियल टिन ॿारनि जो केतिरा ई कलाक हुजण बावजूद पतो न पियो। वारसनि जो ॻोल्हा में मदद न थियण खिलाफ़ पुराणी क़ौमी शाहराह ते धरणो। मुज़ाहिरीन मूजिब राति देर सां ॿार मीर वाह केनाल में किरिया हुआ। इंतिज़ामिया का बि मदद न करे रही आहे। लाड़काणे शहर जा खुलियल गटर मौत जो खूह बणिजी विया। मासूम नींगर खुलियल गटर में किरी फोत। शहर जे यासीन चौक वारे इलाइक़े में चार सालनि जो नींगर साजिद अली पुटु अल्ताफ चांडियो खुलियल गटर में किरी पियो। इलाइक़े वासियुनि गटर मां कढी नींगर खे अस्पताल पहुचायो। डॉक्टर्स नींगर साजिद जे फोत थियण जी तसदीक कई। खानपुर वेझो मज़दा जो मोटरसाइकिल खे टकर, हादसे सबबि चार मुसाफ़िर फोत, हिकु ज़ख़्मी थियो। फोतिन में खानचंद पुट रामचंद, हाकिम पुट शेरल ओड, संदस पुट रमेश ऐं भाइटो सोनो ओड शामिल। फोतिन जा लाश ऐं ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मज़दा ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। टंडो आदम वेझो चार ॾींहं अॻु ज़रई ज़मीन जे तकरार तां मुबैना तौरु क़तल थियल औरत जो केस दाख़िल न थियण खिलाफ़ वारसनि जो एहतजाज। घोट मलुक मलुखाणी जे रहवासियुनि एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन मूजिब ज़रई ज़मीन जे तकरार तां क़तल कयो वियो। पुलिस केस दाख़िल करण खां इनकारी आहे। इंसाफ़ कयो वञे। टंडो लियार वेझो फसल में माल दाख़िल थियण तां बासर शख़्स जो रिढू ऐं धनार औरत ते तशदुद। मुबैना तशदुद में हिकु रिढ जी अखि ज़ाया थी वई। वाक़े जी इतलाह ते पुलिस मुबैना तौरु मुलविस बासर शख़्स खे हिरासत में वठी छॾियो। अखियुनि ॾिठे शाहिदनि पारां बासर शख़्स ते रिढू ऐं औरत धनार ते तशदुद करण जो इल्ज़ाम। बासर इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। नेपाल में आयल बोड़ जे नतीजे में फोतिन जो अंगु वधी 475 थी वियो। 500 समेत 900 ॼणा बदस्तूर गुम। 900 ॼणनि खे बचाइण जी दावा। नेपाली हुकूमत मूजिबि बोट सबबि तबाह थियल घरनि जो मलबो हटाइण जो सिलसिलो जारी आहे। चीनी सरकारी मीडिया मूजिबि तिब्बत मां 555 सियाहनि खे महफ़ूज़ हंधि मुंतकिल कयो वियो आहे।

0: सिंध समेत समूरी दुनिया में रहंदड़ हिंदू बिरादरी अॼु राखीअ जो मज़हबी ॾिणु मल्हाए रही आहे। भाउ ऐं भेण जे रिश्ते खे वधीक मज़बूत बणाइण लाइ भेनर भाइरनि खे राखियूं ॿधी रहियूं आहिनि। भाइर बि भेनरुनि जे तहफ़ुज़ वारे वचन खे वरजाए रहिया आहिनि। राखीअ जो ॾिणु हिंदू धर्म जे अहम ॾिणनि मां हिकु आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: And Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
2: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमूल जारी साल से वन क्वेश्चन जो हिस्सो हो दौरे के अमेरिका सा गडण वाली खबरों बेबुनियाद आन पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है एक तरफन पाबंदियों के अमल करण जा पाबंद ना वे तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिरा विच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के नुमाइंदी तौर से ईरान जो दौरो करण वाली खबरों के रद्द करते है तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो छिकताण में घटताई वाले पाकिस्तानी कोशिशों को हिस्सो हो। पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गाल तैयार है अफगानिस्तान के पैं सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थे रोकणो पव। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से तेहरान पुची।

शेख मोहम्मद बिन अब्दुल लाल सानी जो तेहरान पहुंचण ते परडे वजीर अब्बास रैक्सी आदुर भाव कयो। मुलाकात दौरान बतरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गालियों क्यों हुई। कतरी वजीर आजम ईरानी सदर स्पीकर अस्करी क्यादत से मुलाकातों भी कह अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गालियों कयो वेंदियूं। आबना हुर्मुज़ जे बहाली वारो मामलो भी गौर हेठ ईंदो। कंहिंजी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। नवनि सूबनि बाबति जंहिंखे शौक़ु आहे ठहराउ आणे। सिंध सिबली छह भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ु ठहराउ पास कयो आहे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि ख़बर आहे। सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजी या अवां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जे इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल मुराद अली शाह चयो त मकानी निज़ाम इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण लाइ पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि। पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक़ियो इंतिहाई दिलि ॾियारींदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालुनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे। बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी जी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौरु नामज़दगी ते नून लीग आज़ाद कश्मीर जे इख़्तिलाफ़नि जो शिकार राजा फारूक हैदर वटि पार्टी जे सीनियर अॻवाणनि जो इजलास आज़ाद कश्मीर जे नामज़द वज़ीर आज़म ते ख़र्चाज़ आहे। राजा फारूक हैदर ऐं नव नून लीग आज़ाद कश्मीर जे सदर शाह ग़ुलाम क़ादिर जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी खे वोट न ॾियण जो ऐलान। फारूक हैदर चयो आहे त जेको कुझु थींदो सुभाणे सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी। कोडे जी भरिसां कार्गो लोड रवा में किरण करे टिन ॿारनि समेत चार ॿार मीरवा केनाल में ॿुॾी विया। ॿुॾी विया 10 सालनि जे ॿारे लाहौती जो लाश हथ। 12 सालनि जो मीर मोहम्मद, 11 सालनि जो मुंतज़िर ऐं 13 सालनि जो जुनैद गोपांग हथ न आया। ॻोल्हा जारी। मीरवा केनाल निकरोड़ तां कार्गो लोडर कंट्रोल मां निकिरी वाह में किरी पियो।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में टे ॼणा क़तलु सखर जे कुरैशी ॻोठ में हथियारबंद फायरिंग करे नौजवान निसार बलोच खे क़तलु करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़िए बाबति जांच जारी आहे। कंदकोट जे ॻोठ रसूलाबाद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़फ़र भंगवार क़तलु। वासन जो चवणु आहे त भंगवार बिरादरी जे माण्हू बेगुनाह हमिलो करे नौजवान खे क़तलु कयो आहे। क़ातिल गिरफ़्तार कया वञनि। मीरपुर माथल वेझो फुरमज़ामत पीरसर मीर मोहम्मद गबोल क़तलु। वासन पारां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। लाड़काड़े में दड़े थाणे जी हद रक्षा में सवारी करण जे मामले तां मिराणी ऐं खखराणी बिरादरी में जहिड़ो लठियुनि ऐं कुआड़नि जो इस्तेमालु। ॿिनि औरतुनि समेत टे ॼणा ज़ख़्मी, हिकु नौजवान खे खंभे खणी वञण जो इल्ज़ाम। भीड़ुनि में हलण जहिड़े दौरान पुलिस तमाशो ॾिसंदी रही। जेकमाबाद में टे ॾींहं अॻु क़तलु थियल नौजवान अख़्तर अली चांडियो जे केस में गिरफ़्तार थियल संदसि दोस्तनि जा सरकराईंदड़ इंकशाफ़। जवाबदार हुसैन बख़्श बिरोही ॾोह जो इतराफ़ कंदे चयो त अख़्तर अली चांडियो शराब पी मुंहिंजी फ्रेश वीडियोस रिकॉर्ड कयूं, बाद में ब्लैकमेल कंदो हो। मूं खेसि केतिरा ई भेरा वीडियोस डिलीट करण लाइ मिनतू कयूं, पर हिन इनकार कयो। जंहिं तां मूं कावड़ में अची खेसि क़तलु करे लाश कार में विझी स्विगी ऑफिस ॿाहिरां उछलायो।

0: नेपाल में बोर्ड ऐं लैंड स्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी फोतियुनि जो अंग वधी 359 थी वियो 260 परॾेहनि समेत 1300 शहरी बदस्तूर गुम ॻोल्हा जारी नेपाल ऐं तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में बोर्ड ऐं लैंड स्लाइडिंग सबबु 359 ॼणा अजल जो शिकार थिया नेपाल ऐं चीन जो गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी यूक्रेन रूस खिलाफ़ बरतानवी हथियार ऐं सहूलियत इस्तेमालु कयूं त बरतानिया जा फ़ौजी माग़जाइज़ हथफ़ हूंदा रूस बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो रूसी परे तर्जुमा चयो आहे त यूक्रेन सां गॾु ॿियनि मुल्कनि में बि बरतानवी अॾनि खे निशानो बणायो वेंदो बरतानिया कुझु ॾींहं पहिरीं यूक्रेन खे जदीद मिज़ाइल जो ब्लू प्रिंट ॾियण जो ऐलान कयो
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट पंप साने बाबति ठहराउ यकराउ मंज़ूर करे वरितो। साने जी शफ़ाफ़ जांच करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। साने जी जांच लाइ पार्लियामानी कमेटी जोड़ण वारी रिथ बि मंज़ूर। अपोज़िशन मेंबर्स पारां साने जी ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाईअ जो मुतालबो कयो वियो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त ॿियनि ॿारनि खे मरण खां बचाइण लाइ गॾु वेहणो पवंदो। साने जी रिपोर्ट लिकाइण या कंहिंखे बचाइण जी नीयत नाहे। रिपोर्ट अचण ॾियो। मुल्क में रोज़ाने 1300 ॿार मरी रहिया आहिनि जिन जूं हयातियूं बचाए सघजनि थियूं। निज़ाम सड़ी ऐं गरी वियो आहे। वज़ारतुनि लाइ क़बरनि खे ख़राबु न कंदासीं। सालियानो 4 लख ॿार मरी रहिया आहिनि। असांखे हल करणो पवंदो।

बाबत हफ़्तेवार इजलास शहबाज शरीफ पारां टैक्स निज़ाम में सुधारनि वारो कम तय थियल मुदत में मुकमल करण जी हिदायत। टैक्स चोरी, स्मगलिंग ऐं गैर क़ानूनी कमनि में मुलविस माण्हुनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ करण जो बि हुकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुधारनि जो टीं धुर खां ऑडिट यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त मुल्की तरक़ीअ लाइ टैक्स वारे निज़ाम में सुधारा ज़रूरी आहिनि। सुधारनि वारो कम बि तय थियल मुदत में मुकमल कयो वञे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां पाकिस्तान जे दौरे ते आयल हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल जे शागिर्दनि जी मुलाक़ात पाकिस्तान जे सिक्योरिटी मामलनि खिते ऐं दुनिया में अमुन इस्तेहकाम ऐं खु़शहाली खे हथी वठण लाइ कयल कोशिशुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नौजवाननि जी तालीम, हुनर, कारोबारी सलाहियतुनि ऐं हक़ीक़तुनि ते बदल सोच जी अहमियत ते ज़ोर भरियो। फील्ड मार्शल चयो त तेज़ीअ सां तब्दील थींदड़ ऐं गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवाननि खे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जे असरनि खे समुझ ते मुस्बत मक़सदु किरदारु अदा करणु घुरिजे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे

वेलकम बैक, मेरा पिया घर आया हो राम जी। क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाचों की नजर किया और यकीनी तौर पर आप में थोड़ी बहुत एनर्जी तो बूस्ट हुई होगी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जनाब जब इतना जबरदस्त म्यूजिक चलता है तो ऑफ कोर्स एनर्जी का डबल होना तो बनता है। 5:21 टाइम इज राइट नाउ। सखर की ये जबरदस्त सी हल्की फुल्की सी गर्मा गर्मी फिलहाल, और आपका अपना अशफाक नियाज़ी आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। सखर टू कश्मोर, घोट की लाड़काना जनाब और हैदराबाद, मिठी मातेली दादू, पता नहीं कहाँ कहाँ हम सुने जा रहे हैं जनाब। जहां जहां तक सुने जा रहे हैं वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि जनाब आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर। लेते हैं जनाब शो की पहली कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कि क्या हो जाता है जब मैं कॉल लेता हूँ तो जनाब मेरे साथ लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर पंगा हो जाता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चलें जनाब नहीं आ रही तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। हेलो जी जनाब, कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन बार बार होता है तो बुरा लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एनीवे अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हमें आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं और इसी तरह आपके साथ रहने वाले हैं शाम के 7 बजे तक, और हम आपको सुनवा देंगे एक और गाना जनाब, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारे चिटचैट करना चाहते हैं, आपको एंजॉय करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जनाब आप हमारे साथ रहें तो बहुत मज़े में रहें ना, और जब मज़े में नहीं कोई वो बनता, मज़े का कोई सीन नहीं बनता तो फिर हम सीन बनाना जानते हैं, तो हम सीन बनाते हैं आपके मजे के लिए। आपके सुनाते बहुत प्यारा सा गाना इस वक्त मेरे पास मौजूद है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव स्लोली, क्योंकि इस वक्त मैं प्ले करने वाला हूं कहानी सुनो जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था। इस गाने को सुनिएगा जनाब, क्योंकि मैं प्ले कर जाऊंगा आपके लिए बहुत सारा जबरदस्त गाना, और अगर आज आपके किसी भी दोस्त की बर्थडे है, किसी फैमिली मेंबर की बर्थडे है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे जनाब फेसबुक पे मैसेजेस कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी विशेस को आपके प्यारों तक पहुंचा दूंगा। डोंट फॉरगेट टू कॉल।

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन। अब लेते हैं शो की एक और कॉल। मुझे प्यार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हो? जमाल साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हो? मजे में आए हो? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मुझे यू बुधायो ताजो जो नी ताजो किए गुजरे हो आई जे को आ है गर्मा गर्मी की आ है शिकारपुर में बधिया है घट थिया छा थियो आ
1: गर्मा गर्मी तमाम
0: घणी आ राजो कुछ मसाला नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल मौसम हर जगह ते मौजूद है। मामा जमालदीन भयो साहब, यो बुधायो ता गानो केडो बुधन चाहो था? मुमताज लाशारी साहब, बिल्कुल तांजे लाए प्ले कयूं था। ऐं कंहिं जे नाले ते करण चाहियो? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अदा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। ओके, हमारे साथ है जनाब जमालदीन भयो साहब फ्रॉम शिकारपुर। और आप भी अगर कहीं पर भी हमारी आवाज समाप्त कर रहे हैं तो जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, खैर सा सबनी सागर? जुहेब कटबर लारकाना से। कैसे हैं जुहेब भाई? ठीक ठाक मजे में हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाएं कैसे हैं?
0: फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं आप लारकाना में?
2: सर बस लारकाना में तो रोजगार करता हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं हले तो ताज रोजगार?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर,
0: फर्स्ट क्लास हले तो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जबरदस्त जबरदस्त। पढ़ाई वढ़ाई कंदा आयो सिर्फ कम कार कंदा आयो?
2: हाँ,
0: पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह जबरदस्त सर। असांखे दुआ में हमेशा याद रखना के हो। अच्छा जुहेब भाई, ये तो बुधायो त मुमताज लाशारी तो हलाइण चाहियां अदे जमाल दीन भयो जी फरमाइश से, त केड़े कंहिंखे तव्हां डेडिकेट कंदा हो?
2: मैं अपने दोस्त को करूंगा, आसिफ चाचड़ को।
0: जी जी।
2: और जैनुल आबिदीन मुसीब रहमान को।
0: बस
2: बस
0: चले, ठीक है। थैंक यू जुहेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। लड़काना वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ जनाब, शिकारपुर वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ और बहुत से सिटीज अभी रहते हैं जनाब। लेते हैं चुकी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अब क्या होगा?
0: अब ब्रेक का टाइम।
2: तो फिर क्या होगा?
0: तो फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा।
2: अभी 5:29 हो गया।
0: नहीं, मुझे वैसे ये बताओ तुम ब्रेक के टाइम क्यों आते हो, ये बताओ
2: यार। दरअसल मैं कह रहा हूँ मैं आपके ब्रेक फेल करूँ लेकिन आपके टाइट हो जाते हैं।
0: मेरे ब्रेक फेल करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ।
2: उसके अपने ही ब्रेक फेल हो जाते हैं।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सुनाओ इरफान भाई, कैसे मिजाज है आपकी, आपकी खबरी संगत और लाल संगत कैसे जा रही है?
2: मुझे कहते हैं इरफान अली, मेरी कास्ट से वो और मेरी संगत गुलाबी और मेरी यूटी कबली बिट। आगे बताऊं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताएं बताएं।
2: मेरा तहसील काले पर जिला सखर सूबा सिंध मुल्क पाकिस्तान खंड एशिया दुनिया पानी आगे जाना है।
0: क्या बात है क्या बात है। और आगे कहाँ जाना है बताओ?
2: पता है आपको?
0: नहीं।
2: अगर किसी भी जान में लोग सुन रहे होंगे ना, उसने मेरी पूरी डेटा निकाल दी, अब उसको मेरी एड्रेस याद आओगे क्योंकि मैंने दुनिया पानी का भी जिक्र कर दिया।
0: दुनिया फानी का भी जिक्र कर दिया। वाकई ये बात तो है यार कि दुनिया फानी का जिक्र आपने कर दिया। अच्छा ये बताओ कि अब जो है इंतजार करोगे ब्रेक के बाद?
2: यार करना पड़ेगा। आज के बाद ना मैं एक चैनल लॉन्च करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इंतजार न्यूज।
0: इंतजार न्यूज
2: कभी भी न्यूज नहीं चलेगी, सिर्फ
0: इश्तेहार चलेगी। चलो थोड़ा सा वेट करो, टाइम चेक का टाइम हो जाता है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ओके ओके ओके।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
3: सुनते रहो GFM 90.8

0: साले पटका केर आसा सबनी सा गडो इमाम दिनो भमरो इमाम दिनो भमरो साहब के हाल चाल है ता जा फर्स्ट क्लास
1: भाई
0: साले पट वाला सब किए हैं मौजन में आए ना या माशाल्लाह माशाल्लाह ये मस्त रहो सर मस्त रहो हर वक्त रहो आई ये बुधायो असारे शोता के लगे तो अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ये बुधायो तो साले पट में आजकल केड़ो मौसम आहे माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त ये बुधायो शमन जो गानो बुधाया तो आधे जी फरमाइश थे खालिक भाजी कहीं जना था करना चाहे सही सही ओके जी जी जी जी हाय थैंक यू सो मच ओके मानदीन भमरो साहब पांचो खास ख्याल रखियो जी जनाब हमारे साथ इमामदीन भमरो साहब आप भी हाथ पे हाथ रखे मत बैठे अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जनाब किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं कोई भी गाना और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारा नंबर है 03000113488 लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद के रसा सबनी सा गड लाशारी भाई क्या हाल चाल है फर्स्ट क्लास मजे में छा था क्यों आई छा करना चाहो था जिंदगी में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तांजे रोजी रिज़्क़ में बरकत विझे यो बुधायो असा जो प्रोग्राम तांके के लगंदो आप
1: सही बेहतरीन लगंदो आप हेलो
0: हां माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच यो बुधायो ता मके हाने कॉल किया या पेरी भी तांजी कॉल लगंदी रहंदी आप अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके ओके ओके लाशारी भाई शमन तो प्ले क्या केंजे नाले था करना चाहो
1: सही जमार बचर
0: जी
1: उन्हीं जे नाले कंदा से उन्हीं के सलाम भी दीदा से
0: जी जी वालेकुम असलाम लाशारी भाई पांजो खास ख्याल रखो थैंक यू सो मच जी जनाब हमारे साथ लाशारी भाई इनको प्ले करके सुनवाते हैं जनाब खालिक भाई की फरमाइश पे या नाज प्यारा प्यारा इस गाने को सुनिए हमारे साथ हैं इस वक्त इनाम अली लाशारी फ्रॉम बच्चल शामियानी तो इनाम भाई तांके असा जो सलाम आई तमा के यो गानो डेडिकेट था क्यों इनाम जमाली साहब तमा यो गानो बुधाई

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

सिंध असेंबली नवनि सूबनि जे क़याम तोड़े नवनि यूनिट्स जे हवाले सां थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती। सिंध असेंबलीअ जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह जी सदारत हेठि थियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर

जांच करे ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो साने जी जांच लाइ पार्लियामानी कमेटी जोड़ण वारी रिथ बि मंज़ूर अपोजिशन मेंबर्स पारां साने जी ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करण जो मुतालबो कयो वियो सिहत वारे फाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त ॿियनि ॿारनि खे मरण खां बचाइण लाइ गॾु विहणो पवंदो साने जी रिपोर्ट लिकाइण या कंहिंखे बचाइण जी नियत नाहे रिपोर्ट अचण ॾियो मुल्क में रोज़ानो 1300 ॿार मरी रहिया आहिनि जिन जूं हयातियूं बचाए सघजनि थियूं निज़ाम सड़ी ऐं गिरी वियो आहे वज़ारतुनि लाइ क़ब्रनि खे ख़राब न कंदासीं सालियानो 4 लख ॿार मरी रहिया आहिनि असांखे हल कढणो पवंदो

0: वधीक जो बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गीलानी आज़ाद कश्मीर जो 17वां वज़ीर आज़म चूंडजी वो। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली ने वज़ीर आज़म की चूंड कई। बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गीलानी 30 वोट खड़ी वज़ीर आज़म चूंडजी वो। पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान 14 वोट हासिल कर सको। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती कमीशन जांच शुरू कर छी। मीर रजा जहा घर भाती ए वकील जिब्रान नासिर कमीशन आदो पेश। मीर रजा के वालिद केस की जांच से बेएतमादी जाहिर कर छी। केस की जांच कदड़ कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सयाल जो कुछ सभी के सामू थ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन कर सके तो न वो वजीर अवा दरख्वास्त जो कमीशन से ताल्लुक ना है। अदालती कमीशन के रवायती अंदाज में न हलाइंदासी। कमीशन अवां जे समूरन सवालन जा जवाब गोल्हण जी कोशिश कई वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन सवाल किंदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
3: सकरण के हो तो आवाज़ भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: अला इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह पंहिंजे एडमिन्स खे चयूं था, पंहिंजे इंतिज़ामिया खे चयूं था त असांजो कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करे फौरी तौर ते। सोना ख़ान मस्तूर भाई जी फरमाइश आई आहे, इंशाल्लाह ज़रूरु ईंदासीं।
1: हा सर, सभिनि खां पहिरियां सलाम ॾींदासीं सर।
0: जी जी, कंहिंखे?
1: हा सर, सभिनि खां पहिरियां तव्हांखे, तव्हांजी पूरी टीम जे बाद गवार बचन सम्झाने हुन सलाम, हुन खां बाद में पंहिंजो जमाल दिन भयो आहे सलाम ऐं मुबारक करां तव्हांखे शोभ दुकान अब्दुल भेटो आहे भेटो ऐं सुलेमान अली भेटो
0: फरमाइश कोन पुछंदुमि छो त तव्हांजी फरमाइश त मां हलाईंदो रहंदो आहियां, पर असांखे फेसबुक ते हिकिड़ी दोस्त फरमाइश कई आहे, लिसनर आहे असांजो प्यारो जेको आहे अब्दुल रज़ाक साहब, हुन चयो आहे त फौजी सुमरो हलायो।
1: सर बिल्कुल ईअं करे असां तव्हांजो बि प्रोग्राम ॿुधो, ईअं करे असां पाण ई फरमाइश न पर संगत जो बि रिक्वेस्ट थींदी आहे फरमाइश कयूं बि कंहिं न सघनि, मां बि फरमाइश मोहन कान फरमाइश न कनि
0: न न फरमाइश भली कयो भली कयो, तव्हांजी फरमाइश असां हलाईंदा बि आहियूं हलाईंदा बि सी, पर इहा बि दोस्त जी फरमाइश आहे त मां चयो हुनजी बि फरमाइश पूरी कंदो हलां, छो त हमेशह उहो वीचारो फरमाइश कंदो आहे त मां हुनजी फरमाइश प्ले न कंदो आहियां।
1: बिल्कुल असां
0: बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू अदा, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू, बिल्कुल हमारे साथ है जनाब सोना खान मस्तोई, और जैसे इनका नाम सोना है वैसे ये खुद भी बहुत सोना दिल रखते हैं और सोनी सोनी सी बातें करते हैं, और इन्होंने कहा कि जनाब लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा, अगर आप लड़ाइयाँ करेंगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, अमन शांति के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते रहें क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, तो इसलिए हमेशा अपनों का ख्याल रखें, उन लोगों का ख्याल रखें जो कि आपको बहुत चाहते हैं, हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी जना, बस सभी से गड़ आहे आहे आहे केर केर वहीद वफाई, आई थिंक
2: साईं वफा अब्दुल वहीद।
0: हां एग्जैक्टली,
2: शाबिलो भाई शाका।
0: हां जी वहीद वफा साहब, के हाल चाल तव?
2: शुक्रा अल्लाह जी मेहरबानी आ, त जी आवाज अंदाज शुक्रा, ता बताय भाई शाका, त मिजाज के आ, त जे टेट जो सत किया,
0: सब मिजाज सब सत सब ठीक ठाक आहिन, तवा यो बताओ केटी शाबिलो के लग पियो आ, ता जका मकान के थालन
2: भलो आ, पर हन वक्त को जो बोडल जे लपेट में आ, माने हाने को जो बोडल जी वर बुधा न था, तो गुडवा ते लथवा पानी भात गाने हु, त सुठो माने इलाको आ था तो माहौल।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह साईं थदो रखे, सुठो रखे, पुर अमन रखे, आई जेका है डिजास्टर्स का अल्लाह साईं इन इलाके का बचाए, आई हमेशा खुशहाली रखे ते।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: वहीद भाईओ बुधायो त आज असा के कोई गानो गाए बुधायो यार, वडो दिल तो चाहे तो कोई लिस्टर मके गानो बुधाए या कोई शेर
2: बोले ने असल में गालिया त गानो बिल्कुल असा बुधाईंदा के, पर जे गलो साईं साईं, पर मेरे एकडो मा टोटको बुधाना तो मास्टर मंजूर जे या।
0: हां हां बिल्कुल।
2: दिसो यार मुजे जो कुर्बानियो धरतति में पंधड़ा थो करे, तब सवेर सवेर थी वेंदी आ,
0: वाह वाह वाह,
2: धरत दी सडड़ा थो करे, दिसो यार मुजे जो कुर्बानियो धरतति में पंधड़ा थो करे।
0: अच्छा यो यार के सराहे थो या गिला थो करे, त ना ही थो कर निभागो
2: ना ये सारा है तो
0: बाबा सारा है तो सही है सही है, मां चो शिकायत तो करे तेरी सोचे तो ने भागो एडो टाइम तस तो दर तो भी रहे तो भी तो रहे
2: मां तो एकनी हैरत कना।
0: जी जी,
2: मां शहर जेको बिजे शहर के बिना त सलाम कना, पर मां हर एक फनकार जो मां एहसास जन बुधना ने, मां हैरत जान मास्टर मंजूर पंजो अंदाज गायो वरी मुख्तार रशीदी दे तो उने पंजो अंदाज गायो।
0: जी जी,
2: खोड़ सारा फनकार जी जलाल चांदे पंजो अंदाज, यो एकरा एहसास अंतर मां किया था कदा सलाम परमाजो।
0: बिल्कुल जाहिर गाल है, हर एक जो एक डिफरेंट अंदाज हो जी असा अर्जी हुंदा है, असा जो डिफरेंट अंदाज आ, तो ये सिंगर्स भी जेका हुंदा है उन्हें जो डिफरेंट एहसास जज्बात आवाज स्टाइल सब कुछ अलग हुंदा।
2: बिल्कुल साईं, मां ताके 14 अगस्त ते डाडो खूब बुधो, पर असा जी खुश नसीब असा ता काली कुल वचो बिन कला कन में चार काल सन काल में असा जी काल लगी ना दग बुधो से, पर जो अगलो जुमो गुजरियो तो एड़ो कुदरती ता डेली नथा चो नी।
0: हां इंसान जे
2: ओ उने जो करे कोई शायद ना कम भरे दिया के थकाट भई ना गाली भे भूल जी गई
0: माने तमा से भूल जी गयो बस असा ता सा गलायो को बता
2: मेहरबानी काल लगी वे असा ता जे प्रोग्राम जा आयो पुराना पांदड़ा
0: माने मा ता के नाराज हाने ता मके भूल जी गयो ये के थे
2: माने वो ही हो तो कुछ मॉडल जे लपेट में आवे दिया के जो कम करे तो वाला असा कुछ ख्याल में
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही है सही कोई गल ना अच्छा वफा साहब मा एक गानो तो प्ले किया वहा तुजी दोस्ती रुसवा करे छड़ो फौजिया सुमरो जो असा जी अब्दुल रजाक भाई ने फरमाई से
2: सब पुछी त मा पाण फौजिया सुमरे जा बेहतरीन कलाम मा पाण बुधनो आ
0: सही सही गुड गुड गुड
2: उने को नगमो बेहतरीन हुजे वा जो बुधंदा
0: त केन जे नाले करना चाहो
2: सही अगम त स्पेशली तां जे नाले भाव
0: थैंक यू
2: त का बाद में जो भाणी जो रखी को जतई में जो भाव आ जाहिर में जतई में जो भाटो आया में जतई त का बाद में सोना खान मस्तई बुधियो मा खा में काल करे जानवर मोहम्मद बचल शंबानी आ जे के दोस्त बुधन था मजे भाणी जे रफी का जते खोड़ा सारा सलाम वाह अब्दुल भाई के जते पारो सजे सतक सलाम बा स्पेशली बादर शेख के खोड़ा सारा सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वहीद बा थैंक यू जी जनाब हमारे साथ वफा वही फ्रॉम के टी शाह बेलो और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03111 3488 हमारा नंबर है लेते हैं शो की एक और कॉल अब होगी कॉल पता नहीं कौन थे और आई थिंक जनाब उनके लहजे से बात से पता चल रहा था कि कोई हमारे पंजाबी भाई हैं तो इसलिए मैंने भी उनसे पंजाबी में बात करना शुरू कर दी और उनकी कॉल अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अजीज सलंगी साहब क्या हाल चाल है तांजा सब सफा सफा मस्त मलंग लगा पे आयो तमा यो बुझायो मीरपुर वाला सब केन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये मौज मस्ती में रहो हमेशा मीरपुर का तमा आया आयो तो तांके भली कार चाहूं था मुझा प्यारा भा मीरपुर वारा भा फौजिया सुमरो प्ले क्यों था केन जे नाल था करना चाहो आचर मरी साहब के भी हथन से सलाम असंजा रेगुलर जुमो की है दुआ जुमे तो सत दिन बाद ही दुआ छह दिन बाद अच्छा माना जुमो ना माना रोज कही हूँ हाय सदके वनामा पांजे भाते थैंक यू सो मच इंशाल्लाह ताला आसान के रेगुलर कंटा से मुझा भाव हेलो थैंक यू सो मच मीरपुर वाला भा प्यारा प्यारा भा तमा असानी प्रोग्राम के रोज बुधन चाहो था इंशाल्लाह ताला जरूर इंदा से तांजे फरमाइश अमल कंदा से अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब केरे से सबनी सांगर
3: मैडम अली टावरी से तमाम को सजा जिला कमर सबान
0: के मैडम अली टावरी साहब मैडम अली टावरी साहब केड़ा हाल चाल सब ठीक ठाक हो मजे में हो माशाल्लाह माशाल्लाह मोहरम भा फौजिया सुमरो बुधायण वारो

0: at 6:30 p.m. This soundtrack is brought to you by.
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं. मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे. त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि. ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे. असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे. ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी. 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: गाना सुनवाते हैं और थरपाकर से ये फरमाइश आई थी, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए।
1: यो कदे ख्याल ओ मकली में आचार जा खरो चवे फरमाला सोनाणी याकूब खास डॉक्टर साहिब छोटी।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मुझे जरूर गाना सुनाएगा, तो मैं बिल्कुल गाना सुना रहा हूँ आपको।
3: मेरे दिल से जिंदगी भर
2: तेरा प्यार करना होगा। इस गाने को सुनिए, अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सुनते रहिए GAFM 88 नेटवर्क और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह निगहबान।

सिंधी असेंबली नवन सूबन की क्याम तोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से थींदड़ गालन ते बहस ला रिथ मंजूर करे वरती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थींदड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जी मंजूर कई वही। स्पीकर अवेस कादिर शाह रिथ से सूमर वे ढी ब कलाक बहस किया वो रिथ में है पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिटन के हवाले से बहस थी रो है जैमें सिंध के सरहदन से भी छेड़ छेड़ वारा नुक्ता शामिल आहिन। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर मामले से बहस किया वे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को तू गुजार।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं, फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है। लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर वालदेन सवाल की दाएं तो जड़े ऐसा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी आए तो हाने बाद में उन्हें के केरी जरूरत पड़े थी। मुझो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी आए। इन जो जवाब बिल्कुल आसान है। ये असाजा जे बार असाजी मामूली गफलत के करे जिंदगी भर माजूर रहजी वजन था। अगस्त में 10 साल तई जे बार आन पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लगाया। पोलियो जहाँ कुछ अगर जरात रह भी वह अल्लाह के हुक्म से वे खत्म थी वा ए बच्चों हमेशा के लिए महफूज रहो ए बन भी माजूर यो सबब न बनबो।

0: पार्लियामेंट पिम साने की शफाफ जांच करण जो मुतालबो करे छो सेनेट ए कौमी असेंबली में खास कमेटी ठाण वो ठहराव मंजूर अपोजिशन पारा साने की जांच लाय जोड़ियल हुकूमती कमेटी के रद्द करे छो साने की जांच लाय अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करण जो भी मुतालबो सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल तो पिम साने में मुलविस को भी शख्स न बचंद सभी ऑफिसर के लाइन हाजिर किया वो कोई को भी MNA या सेनेटर फोन न कर अपोजिशन रोड मैप दे तारीखन ए कमेटियन ता मामले के महदूद न कयो वने कें बे साने का बचण लाए मामले जो हल कढ़ियो वेंदो। इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी वजीर आजम पारा जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद करे वरता फौती बारन के वारसन का भी बयान वरता वया जांच कमेटी वजीर आजम के अज शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी कानून वाले वजीर आजम नजीर ताड़ चयो है जांच कमेटी अज शाम ताई शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामूं ईंदी जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वेंदी। सिंध असेंबली नवन सूबन की क्याम थोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से थन्दड़ गाल बहस लायरत मंजूर कर वरती सिंध असेंबली जो अजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थो पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थन्दड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जी मंजूर कई वही स्पीकर अवेस कादिर शाह जो चवण हो तो रिथ से सूमर वे ढी ब कलाक बहस किया वो रिथ में चो वो है पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रो है जैमें सिंध की सरहदों से भी छेड़छाड़ वा नुकता शामिल आन मामूल की कार्रवाई मुअतल कर मामले से बहस कर वे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी ए जरूरी आए असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ई पोलियो

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: हाउस की कमेटी बननी चाहिए जो ये इन्वेस्टिगेट करे। मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त जो कमेटी बनी हुई है। आप जरा फेहरिस्त देख लें, फेहरिस्त निकाल के देख लें कौन किसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें। सब एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे की तहकीक कर रहे हैं। दैट्स नॉट ऑन, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन। और ये वही गोल गोल वाला मामला नहीं होना चाहिए।
1: बच्चों की शहादत हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसके स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी इसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक कमेटी बना ले एमएनएज और सेनेट के ऊपर।
2: पार्लियामेंट पिम्स थाने की शफाफ जांच करण जो मुतालबो करे छो। सेनेट ए कौमी असेंबली में खसूसी कमेटी ठाण वारा ठहराव मंजूर। अपोजिशन पारा साने की जांच लाए जोड़ियल हुकूमती कमेटी के रद्द करे छो। साने की जांच लाए अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करण जो मुतालबो। सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल चो तो पिम्स थाने में मुलविस को भी शख्स न बचंद, सभी ऑफिसरन के लाइन हाजिर किया वो, कोई को भी एमएनए या सेनेटर फोन न करे। अपोजिशन रोडमेप दे तारीखन ए कमेटी मामले के

आज़म खे पेश कंदी। तफ़सीली रिपोर्ट 7 ॾींहनि में साम्हूं ईंदी। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई बि थींदी। सिंध असेंबली नवनि सूबनि जी क़याम थोरे नवनि यूनिट्स जे हवाले सां थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती। सिंध असेंबलीअ जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह जी सदारत हेठि थियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवनि सूबनि बाबति थींदड़ बहस जे हवाले सां रिथ ऐवान में पेश कई, जेका मंज़ूर कई वई। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त रिथ ते सूमर वारे ॾींहुं 2 कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिट्स जे हवाले सां बहस थी रहियो आहे, जंहिंमें सिंध जी सरहदनि सां बि छेड़छाड़ वारा नुक़्ता शामिल आहिनि। मामूल जी कार्रवाई मुअतल करे हिन मामले ते बहस कयो वञे।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस के जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: की कमेटी बननी चाहिए जो ये इन्वेस्टिगेट करे। मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त जो कमेटी बनी हुई है। आप जरा फेरिस्ट देख लें, फेरिस्ट निकाल के देख लें कौन किसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें। सब एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे की तहकीक कर रहे हैं। दैट्स नॉट ऑन, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन। और ये वही वही गोल गोल वाला मामला नहीं होना चाहिए।
1: बच्चों की शहादत हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसने स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी इसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक कमेटी बना ले एमएनएज और सेनेट के ऊपर।
2: पार्लियामेंट पिमसाने की शफाफ जांच करने जो मुतालबो कर छो। सेनेट ए कौमी असेंबली में खास कमेटी ठहण वाला ठहराव मंजूर। अपोजिशन पारा साने की जांच लाय जोड़ियल हुकूमती कमेटी के रद्द कर छो। साने की जांच लाय अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करने जो मुतालबो। सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल चो तो पिमसाने में मुलविस को भी शख्स न बचंद, सभी ऑफिसर के लाइन हाजिर किया वो, कोई को भी एमएनए या सेनेटर फोन न करे। अपोजिशन रोड मैप दे तारीखन ए कमेटियन ता मामले के महदूद न कयो वने, कें बे साने खां बचण लाए मामले जो हल कढ़ियो वेंदो। इस्लामाबाद जी पिम्स में पेश आयल साने जी जांच जारी। वजीर आजम पारां जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत